होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Mere
1: man ki Catch Raj Kapoor's evergreen classic Sangam, restored in 4K as part of the South Asian Film Festival. This Sunday, the 4th of October, from 2 p.m. at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner, Lyco Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
5: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Breakfast with Deep Roger.

0: फ्रॉम द मूवी कटी पतंग. ब्यूटिफुल ट्रैक. प्यार दीवाना होता है.
1: हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है.
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is Laika.
0: Hope you're enjoying. Yes, aur main hoon Sheena. और आप लोग मेरा साथ देंगे राइट अंटिल 1 o'clock. बहुत ही खूबसूरत सा समय है और बहुत ही खूबसूरत सा आप लोगों का साथ भी है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन. बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग करनी भी हैं. बट पहले तो जस्ट वांटेड टू वेलकम ईच वन ऑफ यू जो सुन रहे हैं. अपने आप को ना एक स्माइल दे दीजिए. हम हमेशा दूसरे लोगों को स्माइल देते रहते हैं पर कभी कभी अपने लिए भी एक स्माइल होनी चाहिए. नहीं, सो गिव योरसेल्फ अ स्माइल एंड वेलकम ऑन बोर्ड द जर्नी ऑफ अनप्लग्ड म्यूजिक. काफ़ी होगा ऐसा म्यूजिक जो आपके मन को चिल करेगा, वो जैसा है जो दिल को छुएगा. आई कैन गारंटी दैट. ना अगर मैं गारंटी करी तो कुछ ना कुछ अच्छा आने ही वाला होगा. इज़न्ट इट? जो नेक्स्ट गाना आने वाला ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है. इस गाने में सब कुछ सिमटा हुआ है, जिंदगी सिमटी हुई है और आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है. इस गाने को क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्या बताऊं इसके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है. और ये तो हिट कॉमेडी गोलमाल का गाना है. यू नो व्हाट, जब भी मैं थोड़ा सा भी सैड होती हूँ, उदास होती हूँ, हैप्पी साइड होती हूँ, मैं ये मूवी देख लेती हूँ. अमोल पालेकर ने क्या एक्टिंग की थी इस मूवी में. अभी भी ना, यू नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू जो कि मुझे हंसाई देता है. और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना है. और ये अगर आपको मालूम हो कि ये गाना ना रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन थी गुलजार जी और आरडी बर्मन के बीच में, पंचम दाह के बीच में. दे वो वेरी क्लोज फ्रेंड्स और इकट्ठे घूमा करते थे. एक दिन रूफ टॉप पे ऐसे बैठे बात करते करते कुछ मोमेंट्स में उन्होंने ये गाना बना डाला, ये रिदम बना डाली. और कितना मिनिमम इसमें म्यूज़िक है. बट वो कहते हैं ना, कभी जो बोल होते हैं वही सारी की सारी आपकी लाइमलाइट ले जाते हैं. और किशोर कुमार ने फुल जस्टिस किया इस गाने पे, राइट. और इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का. आई एम टेलिंग यू अबाउट इट, द वैल्यू ऑफ पल, द वैल्यू ऑफ यू नो टाइम. व्हेन एवरीवन सेज, आजकल सब मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते रहते हैं, भैया पल और यू नो टू बी यू नो लिविंग योर मोमेंट और बी इन प्रेजेंट. बट इन गानों में इतनी अच्छी तरीके से ये दर्शाया गया है और बताया गया है ना कि आप सोचते हैं कि ये गाना सुन लेना तो आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है. एंड अ कॉमन फैक्टर अबाउट दिस गाना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गाना एंड ऑल्सो रितु का भी फेवरेट गाना है ये. तो जब भी वो ये गाना यहाँ प्ले करती थी ना, वो मुझे बुला लेती थी, शीना यू नो लेट्स हियर इट आउट टुगेदर. सो वी गोना प्ले दिस एंड आफ्टर दैट उसका जो उसके बाद जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, इट्स सम हाउ रिलेटेड टू दैट. वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है बट वो फीलिंग्स है ना जो पल को लेके, लम्हों को लेके, वो वहीं की वहीं रहती है. सो लेट मी नो, लेट्स हियर दी सॉन्ग्स टुगेदर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट.
2: ये है लाइका रेडियो. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: What a beautiful track from the movie Lamhe. And that is what I was talking about. The Pal, the Lamhe. And this is sung by Hariharan. So kya chemistry dikhi dono gaano mein? Kya similarity dikhi do gaano mein? This is Laika. And yes, kuch aise gaane hote hain, sirf entertain nahi karte. They entertain you for a moment, but aise hote hain ki kuch na kuch sikha ke jaate. To live a lifetime in a single moment. Aur aisa hi wo gaana tha, aane wala Pal aur ye Lamhe, isn't it? ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, इट इज़ दिस टाइम कि ऐसी चीज याद है कि एक साउंड ऑफ टाइम स्लिपिंग थ्रू आवर फिंगर्स, कि ऐसा लगता है कि बस उंगलियों से, हाथ से, आपके हाथ से जो कहते हैं ना, ऐसे फूंक मारी और वक्त निकल गया. वो कहते हैं द फ्यूचर इज जस्ट अ विस्टर वेटिंग टू लीव एंड द पास्ट इज ऑलरेडी गॉन. तो भाई अभी की जो सांसें हैं उनको लीजिए और उनको इंजॉय करिए, और ये गाने वैसे ही दर्शाते हैं. होप यू एंजॉइंग द म्यूजिक, होप दिस लॉट्स ऑफ फन. एंड यस, बहुत सारी और बातें भी करनी है. अच्छा, म्यूजिक भी प्ले करना. आप लोग बताइए क्या चल रहा है ऑन अ संडे फन डे मॉर्निंग. बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सब उठ के आराम से बैठे हैं विद योर चाय की प्याली इन योर ओन घर वाली और अ कप ऑफ कॉफी. यू नो आई ऑलवेज हैव दिस डिबेट एंड आई ऑलवेज लैंड अप हैविंग अ कॉफी. जितनी मर्जी मैं कर लूँ मुझसे ना हो पाएगा. But thank you so much for sharing your pictures, what's happening around. And yes, we will be continuing playing good music. And now let's go. If you have to go on holiday, then what should you do? Holiday breaks are brought to you by South All Travel. और जैसा कि मैं कह रही थी, अगर आप हॉलीडे पे जाने की सोच रहे तो ट्रैवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग. साउथ ऑल ट्रैवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट, हाँ जी, सिर्फ £629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स. ट्रैवल बाय 10th ऑफ दिसंबर. कॉल द साउथ ऑल ट्रैवल 0288-843-4444 और सिंपली विजिट southalltravel.co.uk. Breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com. Or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. This is Ritu Sharma. Make your celebration special with Falcon Festive offers.
1: Soghat Plain Paratha, 1.6 kilos, 2 for 3.79. Shankar Grated Coconut, 400 grams, 1.29. Suhana Son Papri, 400 grams, 2 for 2. Shan Masalas, 2 for 1.79. Bikano Aloo Paratha, 400 grams, buy one, get one free at 1.99. Hamza Masala Fries, 400 grams, 2 for 2.50.
2: Aur shopping ke saath paaye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlett Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
3: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot Anniversary Sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10:00

0: हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और ये जो था हम किसी से कम नहीं, और डेफिनेटली हम तो डेफिनेटली किसी से कम नहीं, दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड एवरी वन शुड हैव। और ये गाना गाया था किशोर कुमार और आशा ताई ने, और बहुत ही खूबसूरती से गाया था। मैं ये गाने को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, तो बहुत सारे गानों का ना इसमें एक मिक्सचर सा है, बहुत सारी ट्यून्स इधर उधर से लेके ये गाना बना है। तो आई वॉज थिंकिंग कि आपको कोई ये गाना किसी और चीज़ की, किसी और गाने को याद दिलाता है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड यस, वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और यस, अगले घंटे में होगी जोड़ी नंबर वन। तो ये जोड़ी नंबर वन जो है बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी थी, और इसके बारे में मैं इतना बता सकती हूँ कि जैसे कि कहते ना पुष्पा नो टीयर्स, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली। कौन है, कौन सी जोड़ी है, यह आप लोग गेस करते रहिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at currency update today, £1 is going to fetch you 127.44 Indian rupees, 86.02 Afghani, 366.94 Pakistani rupee, 163.05 Bangladeshi taka, 437.94 Sri Lankan rupee, 171.78 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: Golden Pounds is trading at £100.60 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.

0: This was a back-to-back music. What a beautiful track from the movie Maine Pyar Kiya. Aate jaate, haste gaate.
1: This is Laika.
0: And it's time for jodi number one. पर आप लोगों ने तो पहले ही guess कर लिया है. तो मुझे तो ये लग रहा था मैं तो एक छोटा सा you know hint drop करूँगी और थोड़ा वक्त लूँगी. But आप लोगों ने तो oh my god बहुत बहुत smart हैं. पता नहीं कौन से बादाम काजू खाते हैं. भैया पुष्पा एटीएस इतना सा मैंने बस बोला और लोगों के मैसेजेस मतलब खुशियों के मैसेजेस आने शुरू हो गए. जोड़ी नंबर वन टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इज आज बात एक ऐसी जोड़ी की करना चाहती हूँ जिनको आपने जिनके गेस तो कर ही लिया है और बॉलीवुड की वो खूबसूरत दौर की याद दिलाएगी जहाँ पे खूबसूरती और सिंप्लिसिटी वॉज द ओनली थिंग. जब रोमांस स्क्रीन पर बहुत सिंपल था लेकिन उसमें भी ना एक अलग ही मस्ती और जादू सी थी. राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर, नो गेसेस राइट. राजेश खन्ना जो कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार जिनकी एक मुस्कुराहट पर फैंस दीवाने हो जाते हैं और आज भी इतने मैसेजेस आ रहे हैं और भी मैं देख रही हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा फैन हैं और इनमें से ये विमेन है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा फैन है अभी भी हैं होता है. और शर्मिला टैगोर क्या एलिगेंस क्या खूबसूरती और अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए मशहूर और आज भी उतनी एलिगेंट लगती है. नहीं दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी एंड आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग्स लेटर ऑन द शो. बहुत सारी बातें होंगी इनके बारे में पर आप बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है ये जोड़ी के बारे में. मतलब सिंप्लिसिटी ही इज द बेस्ट वर्ड. एलिगेंस और रोमांस बड़ा ही नेचुरल सा दिखता था है ना. और आराधना अमर प्रेम सफर और दाग जैसी फिल्में की हैं इन्होंने और कुछ तो गाने इतने खूबसूरत हैं और मैं कोशिश करूँगी कुछ पल आप लोगों को उनके साथ उन्हीं की यादों में लेके चलूँ. This is Sheena.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.95 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by simply using SBI Yono mobile app and terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com. Or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.com. UK. Laika Radio.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: एनएस कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना और हमारे जोड़ी नंबर वन ने ये बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में बताया था और अमर प्रेम ये मूवी थी और इसकी कहानी ना एक्चुअली में बहुत ही अलग सी थी बिकॉज इसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की रिलेशनशिप बहुत ही बॉलीवुड रोमांस नहीं था इट वॉज वेयर शर्मिला टैगोर जी ने पुष्पा का रोल किया था जबकि राजेश खन्ना ने आनंद बाबू फिल्म थोड़ी सी इमोशनल थी और थोड़ी सी लोनलीनेस कंपैशन और ह्यूमन कनेक्शन पे थी बट ये गाना डेफिनेटली आज के दौर में भी मैं कहूँ ना तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है वी ऑल थिंक अबाउट कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे एंड आई ऑलवेज से लेट देम बी हु केयर्स राइट और सेंट्रल थॉट यही है लोग क्या कहेंगे आज भी सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आज भी क्या हम अपनी ज़िंदगी में लोग क्या कहेंगे को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं आप लोग बताइए और ये है एक्चुअल में दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ लाइफ लोगों के बारे में सोचते रहेंगे अच्छा वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगी बट द आइकॉनिक थिंग अबाउट दिस अमर प्रेम वॉज पुष्पा एट ईयर्स ऐसे राजेश खन्ना ने बोला था कि आज की डेट में भी आई वुड से हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में आज भी ये कई जगह कोट किया जाता है बहुत ही फेमस कैच फ्रेज है और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है प्लेड बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग वो कह रहे हैं उन्होंने सीता मैया को नहीं छोड़ा था तो लोगों ने तो आप लोग तो क्या हैं सो प्लीज़ जितना सुनना है ना उतना सुनिए भगवान ने दो कान किसके लिए दिए हैं एक से सुनिए दूसरे से निकालिए या फिर गांधी जी की तरह दोनों कान ही बंद कर लीजिए सुनिए ही मत कुछ दैट्स व्हाट आई हैव टू से कमिंग अप नेक्स्ट इज अ गाना दैट्स गोना बेसिकली पुश यू अप व्हेरेवर यू आर अगर बैठे हैं तो उठ जाइए और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ करना शुरू हो जाइए वन ऑफ द आइकॉनिक गाना कमिंग अप नेक्स्ट
0: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: And yes, this was the iconic movie Aradhana, जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था. वैसे पहले सुपरस्टार थे, but इस मूवी ने स्पेशली और ये गाने ने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना ने उनकी रोमांटिक स्टार इमेज को और मजबूत बना दिया था. And इसमें शर्मिला टैगोर का, as I remember, डबल रोल भी था. तो लेट मी नो व्हेदर इज द वन और टू ट्रैक्स आई एम गोना प्ले इन दोनों जोड़ी के, एंड लेट्स हियर इट आउट टुगेदर. और बताइए कि आप लोग जो हैं क्या सोचते हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बारे में, कि डेफिनेटली उनकी जो मूवीज काफी आइकॉनिक थी, बट देयर इज लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जस्ट जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, और मैं कुछ क्या पता एक दो बता ही दूं.
2: मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM.

भरी। राजेश कनन शर्मिला टैगोर वाटर जोड़ी और ये गाना था मूवी सफर का और सफर एक ऐसी मूवी थी जो एक टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि राजेश खन्ना ने बेसिकली 17 बॉक्स ऑफिस हिट्स दिए थे बिटवीन 1969 टू 71 और ये मूवी भी उसमें एक मूवी तो इमेजिन 17 कंसेक्यूटिव बॉक्स ऑफिस हिट बाय गॉड क्या करें हम तो मतलब यहाँ पे एक छोटा सा काम नहीं कर पाते बैक टू बैक ओ एम जी एंड येस ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट वन मोर सॉन्ग एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारी सी जोड़ी और सब लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ी आइकॉनिक जोड़ी थी और एवरग्रीन जोड़ी थी और बेसिकली ऐसी ही जोड़ियों को हम डेफिनेटली लेके आएंगे आपके पास दिस इज शीना और अब बात करते हैं हमारे लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 36 एंड इट्स ऑल अबाउट इनसाइट्स इनटू फॉस्टर केयर और ये होस्ट किया है हमारी फेवरेट रूबी रजा ने फ्रॉम फॉस्टरिंग वर्सेस अडॉप्शन एंड द अप्रूवल प्रोसेस टू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द सपोर्ट अवेलेबल टू केयरर्स जो कि आसान काम नहीं है ये जो एपिसोड इट गेट्स इनटू द क्वेश्चंस पीपल ऑफ्टन हैव बट डोंट नो हु टू आस्क सो डेफिनेटली आप जरूर सुनिए और जरूर देखिए हियर डायरेक्टली फ्रॉम फॉस्टर केयर प्रोफेशनल्स एंड अ फॉस्टर केयरर अबाउट व्हाट इज really takes to open up your home support a child and become part of a wider community like extra podcast available on spotify youtube amazon apple and other major streaming platforms like extra is here get all the latest travel updates for the midlands at breakfast and drive This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. ये है लाइका रेडियो

0: He's like a...
1: गजर ने किया इशारा कि अब दोपहर का टाइम हो गया है एंड इट्स अ संडे की दोपहर और आई वुड से दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग मी पिक्चर्स खाने की क्या बोलूं मैं मतलब मैं यहां बैठी हुई हूं बिकॉज़ वी आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग इन स्टूडियो और आप लोग और वो फोटोज भी जो लोग भेज रहे हैं ना वो AI जनरेटेड भेज रहे हैं आजकल तो मतलब लाइफ ही AI जनरेटेड हो गई है प्यार भी मुझे लगता है AI जनरेटेड ही हो जाएगा कुछ टाइम तक जो फीलिंग्स आजकल सारे लोग ChatGPT और यहाँ वहाँ से पूछ के यू नो सारे प्लेटफॉर्म से पूछ के ही मैसेजेस लिखते हैं अपना दिमाग और दिल का इस्तेमाल करना लोग भूल से ही गए हैं जैसे विल यू अग्री विद दिस ओर नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली यूजिंग यू नो ऑल दीज प्लेटफॉर्म अपने दिल के एक्सप्रेस करने के लिए यू नो पोएम लिखनी है कोई पोइट्री करनी कोई शेर व शायरी करनी है या कोई मैसेज लिखना है बस स्पीकर ऑन किया बोला मेरी ये भावनाएं हैं और क्या सुंदर वे में आपको जो AI एक जवाब दे देता है तो सामने वाला वैसे ही इंप्रेस हो जाता है तो जो आपको एक्चुअल में दिल से जानते हैं ना उसे पता होता है आप कितने पानी में नहीं और ऐसी कुछ पिक्चर्स मुझे खाने की भेज रहे हैं लोग मुझे पता चल गया है आपके हाथ से बना खाना नहीं AI जनरेटेड प्यार मोहब्बत वाला खाना है बट प्यार से भेजा है तो चलिए AI का खाना ही सही और ये सब लोगों पता है जिन्होंने मुझे ऐसी फोटोज भेजी हैं तो मैं किन के लिए ये पॉइंट आउट कर रही हूँ पर ये संडे की दोपहर जो होती है बहुत ही खूबसूरत सी होती है यू नो समटाइम्स वी नीड टू टेक अ पॉज क्योंकि हम लेते नहीं हैं बहुत सारा काम होता है बट अ लेजी संडे आफ्टरनून इज अ रिमाइंडर दैट यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी प्रोडक्टिव हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना ही करिए तो बेटर है सुकून की एक और दोपहर मुबारक हो और इन्जॉय करिए अगर नहीं करिए अभी तो शुरू हुई है आज खुद को वक्त देने का दिन है तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल लीजिए और यस
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling can get you up to 126.95 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or by using SBI Yono mobile app. Terms and conditions do apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio.
2: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Annapurna Chakki Atta, 10 kilos plus Foco Coconut Water, 1 litre, just $7.99. Master Chow Hakka Noodles, 140 grams, 5 for £1. Hira Mango Pulp, 850 grams, 2 for $2.79. Suhana Pickles, buy one, get one free. 1 kilo at $2.99 or 400 grams at $1.49. Dawat Extra Long Basmati Rice, 10 kilos, $15.99.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali.
4: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot Anniversary Sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Sunshine, skyscrapers and souks.
8: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all protected.
9: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: A beautiful track and a beautiful artist, Kefi Azmi. और ये खूबसूरत सी amalgamation थी जो कि जगजीत सिंह के साथ थी और ये मूवी थी अर्थ. इसके सभी गाने इतने खूबसूरत हैं कि जो भी गाना प्ले करें वो कम ही लगता है. बट कैफी आजमी जी, यू नो, एक लेजेंड गजल सिंगर जगजीत सिंह के साथ उन्होंने इस मूवी में तो डेफिनेटली एक ऐसा मैजिक क्रिएट किया था विच वॉज क्लासिक क्लासिक. और इतनी क्लासिकल ट्यून्स इसमें आई थी और डीपली आई वुड से डीपली ऐसी ऐसी जो थी कन्वेंशनल सॉन्ग्स थे कि वो आपके दिल को छूने वाले थे. सो ये थे हमारे Artist of the week और कल होंगे एक नए.
1: This is Leica Radio. Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Yes, थोड़ा सा style change करें, थोड़ा सा mood change करें from गजलें से लेकर थोड़ा सा डिस्को डांस पे चलें. दिस इज फ्रॉम डिस्को डांसर, द डेयरी वैली स्पॉन्सर्ड गाना. काफी इंटरेस्टिंग गाना है. लेट्स, जिन्होंने नहीं वर्कआउट किया दे कैन डू इट राइट ऑन दिस सॉन्ग. आई सी लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर कुकिंग विद देयर कर्ड चीज, सो कीप योर कर्ड चीज ऑन वन साइड और थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए. व्हाई नॉट, इज़न्ट इट? पार्वती खान की आवाज में जिमी जिमी. आप तो मुझे बस इतना बोलिए, शीना शीना आ जा, हमने तेरे लिए खाना बना के रखा है. How many of you are saying that?

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Ritu Sharma.
2: और हाँ जी, आप जितने भी 90s के फैन हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है. 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट द ओवर अरेना वेम्बली ऑन संडे 20th ऑफ दिसंबर. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS. एक्सक्लूसिव रेडियो भारत वन एंड ओनली लाइक अ रेडियो नेटवर्क. सो बाय मिस्टर चांस.
0: दिस इज रितु शर्मा. Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.

0: रहूं तो
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: This was our Coca Noodle Tasty track. बहुत ही खूबसूरत सा गाना from the movie 1942, A Love Story. और ये बहुत ही खूबसूरत सी movie थी और इसमें अनिल कपूर ने बहुत ही अच्छा role किया था. But क्या आप लोगों को मालूम है कि अनिल कपूर ने ये movie सबसे पहले reject ही कर दी थी कि मुझे नहीं करनी है कि मैं maybe you know I'm too old in front of like you know the star cast. But again यही हुआ इनमें कि वो जिन्होंने जितना उन्होंने नाना की उतना ही उनको इंसिस्ट किया गया और उसके बाद यू नो विधु विनोद चोपड़ा ने और उन्होंने उनको इसी मूवी में लिया तो और उसके बाद तो वी ऑल नो यू नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट मूवी और उनका रोल डेफिनेटली मुझे तो बहुत पसंद आया था बहुत ही काम कंपोज्ड वो एक्टर है जहाँ भी कुछ भी करते हैं ना अपने बेसिकली एक छाप छोड़ के डेफिनेटली जाते ही जाते हैं तो ऐसी ही कुछ कुछ मूवीज़ थी जिनमें एक लव स्टोरी भी थी और एक यू नो बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक भी होता था तो मतलब सब कुछ एक ही मूवी में डाल देते तो आपको वो मूवी बार बार बार बार देखने का मन करता था एंड दिस ब्रिलियंट सॉन्ग वाज संग बाय नन अदर देन कुमार सानू
3: ये है लाइका रेडियो
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 127.37 Indian rupee, 366.76 Pakistani rupee, 162.87 Bangladeshi taka, 437.73 Sri Lankan rupee, 1.32 US dollars and 63.36 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Radio.
4: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LAIKA Radio.
2: Golden Pounds is trading at £100.60 per gram.
4: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
5: Yeah.
3: Leica Radio.
6: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend, 4 till 7, बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.
2: और हाँ जी, आप जो है बहुत ही आराम करिए क्योंकि ये संडे की दोपहर है, जैसा कि मैंने कहा था. और संडे की शाम के लिए इवनिंग मूड भी ले आइए. बट अभी आफ्टर 1 o'clock ऑन द एयर वेव्स इट विल बी अनुराग विद हिज राग विद हिज बातें विद हिज विचार राइट. Take it easy, as I said, you need to take a pause sometimes. ये नहीं कि संडे है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, because Monday blues. हम सबको होते हैं, right? But Monday को एक fresh start देने के लिए है, एक sweet start देने के लिए थोड़ा सा pause करना भी ज़रूरी है. And that is what I've learned in my life. Pause word. You need to take a pause in life. और आप ज़रूर pause लीजिएगा, but हाँ, अपना enjoy करिए, बहुत ही अच्छा सा मौसम है, फिर ठंड होने ही वाली है. तो जब तक है ये धूप, उस धूप को enjoy करिए. अपना जो है ख्याल रखिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ख्याल हेल्थ कम्स फर्स्ट, इजंट इट. और मेरा वक्त तो जा आ रहा है शो पर से जाने का. एंड आई एम गोना लीव यू विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी हीरो. और हीरोइन तो सिर्फ मैं ही हूँ, है ना. दिस इज शीना. होप यू एंजॉयड माई कंपनी एज आई एंजॉयड अ लॉट. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस. इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है और यू नो जितना मिलता है वो हम कहते हैं बटोल लें, क्योंकि फिर पता नहीं कब मिले. तो जब तक मिल रहा है आई एम रियली एंजॉइंग इट. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एज वेल. एंड इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर द फूड दैट यू सेंड टू मी, एआई वाला. और उन्होंने और लोगों ने चढ़ाने के लिए और फोटो भेज दी हैं कि देखिए आप ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं. नेवर माइंड, मे बी समडे शायद आप लाइव मेरे लिए स्टूडियो में लेकर आए. बट जस्ट वॉन्ट टू से हैव अ हैप्पी हैप्पी एंड अ ग्रेट संडे. इन्जॉय योर वीक, कमिंग वीक, एंड बी पॉजिटिव. एंड आई विल सी यू जल्दी ही. कब, कहाँ, कैसे, ये तो वक्त ही बताएगा. तो उस वक्त पे ही छोड़ देते हैं हम मेरा ही प्यार के. फिर मिलेंगे चलते चलते, मिलेंगे जरूर बहुत जल्दी. दिस इज शीना से सेइंग बाय.
3: ये है लाइका रेडियो.
0: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
5: Elephant Medium Atta, 25 kilos, just 13.79. Laila Gold Basmati Rice, 10 kilos, only 12.99. Bikaji Namkeen, 200 grams, pick up 2 for just 1. And Tilda Pure Basmati Rice, 20 kilos, 32.99 with a free case of KTC Chickpea Tins.
0: Or shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali.
7: It's back. It's bigger and better.
8: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
9: The Leicester Diwali Shopping Festival.
7: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
8: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
7: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
8: For store bookings, call 07803 240580
7: or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialise in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

0: तेरे चेहरे की मुस्कान फूलों से भी प्यारी है, तेरे चेहरे की मुस्कान फूलों से भी प्यारी है, तू पास हो तो हर शाम हमारी है। तेरी खुशबू से महक उठती है मेरी दुनिया, तेरी खुशबू से महक उठती है मेरी दुनिया, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही जिंदगी हमारी है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। कुछ तो कॉमन है आज के गीतों में, अगर आपने जान लिया है तो जवाब दे सकते हैं। और अगर ये गीत आपके मन को भा गए हैं, आपकी किसी भी इमोशन को इन्होंने छू लिया है, टच कर लिया है और आपको कुछ याद दिला दिया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे हमेशा आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है। वैसे मेरी स्क्रीन फुल है आपके मैसेजेस से, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिए। मेरे बहुत से साथियों ने तो बता भी दिया है क्या कॉमन है आज के गीतों में। हाँ, इस वर्ड पे अगर आपको कोई ख़ास गाना याद आ रहा है, जिसके साथ आपकी कोई याद जुड़ी है, तो बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो गीत प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। सो फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, खुशबू की तरह महकते रहो, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर मौसम में बस खिलते रहो, मुस्कुराते रहो और महकते रहो। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, SBI UK के जरिए अगर पैसे आप इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बहुत ही आसान है। You can walk into the branch, you can go online और SBI Yono mobile app अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है अपने टेलीफोन पर, तो घर बैठे पैसे ट्रांसफर कीजिएगा। Terms and conditions are always there. तो आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीस एंड 50 पैसास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.

0: इतना प्यारा गाना था लता मंगेशकर एंड महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म प्यार किए जा 1966 में आई थी ये फिल्म याद है आपने कब किसके साथ देखी थी और क्या आपके वो भी आपके लिए यही गीत गाया करते थे और जवाब में आप भी कुछ ऐसा ही कहा करते थे अगर हाँ तो बता दीजिए इंतशाब आपने फूल फिल्म का एक गीत सुनना चाहा है मेरी कोशिश रहेगी प्रोग्राम में शामिल करूँ नेक्स्ट आवर में मैं शैलेंद्र सिंह के गाए हुए कुछ गीत शामिल करना चाहूँगी शैलेंद्र सिंह इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टूडे और फिर संध्या शांताराम उनकी डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि आज के दिन लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी तो उनकी भी फिल्मों के कुछ एक गीत शामिल रहेंगे इन द थर्ड आवर देन कौन सी फिल्म आज के दिन रिलीज हुई थी उसके बारे में भी बताऊंगी सो बहुत कुछ है प्रोग्राम में आपको मालूम है कि 90s के ज़्यादा गाने नहीं सुना पाऊंगी मैं पर जो भी सुनाऊंगी मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को ज़रूर पसंद कर रही हैं और करती भी रहेंगी ये बता दूँ कि ये प्यार किए जा वाला गाना किसने आप तक पहुँचाया
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Leica Radio. इंतशाब के साथ साथ सुमीला मुंगर जी हरप्रीत संधु सिद्धू एंड अर्जन जी विजय गुजरी संतोष फ्रॉम हैरो मिसी शेख फ्रॉम स्लाव अमिता जी उल्लास फ्रॉम टोरंटो सहर संध्या भावसर फरीदा गुलाम अली जी जैस्मिन जी दिव्या फ्रॉम हैरो मनु जी एंड प्रीतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप कौन हैं सुशील जी थैंक यू इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए अगला गाना भी आपको ज़रूर पसंद आएगा लता जी एंड मुकेश जी की आवाजों में गाया हुआ ये गीत किस फिल्म से जरा याद कीजिए
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: फिल्म तो आपने ज़रूर देखी होगी, वो ज़माना 1975 का, 70s में छाए हुए थे कौन, राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना ने इस फिल्म में काम किया था, राज खोसला साहब ने इसे डायरेक्ट किया था फिल्म को, नाम था फिल्म का प्रेम कहानी। और राजेश खन्ना के साथ साथ इस फिल्म के हीरो शशि कपूर भी थे, और दोनों का ही बहुत खूबसूरत काम था। लव ट्राइंगल कहानी थी, है ना, स्टोरी आपको मालूम ही होगा कि किस पर बेस्ड थी और किसने बनाई थी ये फिल्म, सब कुछ याद होता है आप सभी को। तो इस फिल्म के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, चल दरिया में डूब जाएं, वो गाना भी बहुत प्यारा था। देन प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोस्तों में कोई बात चल पड़ती है, नदिया से बिछड़ा, वो वाला गाना भी, एंड प्रेम है क्या। तो ऐसे बहुत सारे गाने थे और सारे बहुत अच्छे गीत थे। आपको पसंद आया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी चॉइस आपकी चॉइस बन ही जाती है ना। वेल, बहुत से गीतों की फरमाइशें आपकी तरफ से भी आई हैं और कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपकी पसंद को भी पूरा कर पाऊँ। फरजाना जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आई हैं आप भी, तो स्वागत है आपका भी।
2: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स, Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: शिव हरि का संगीत और लता जी का साथ दिया अभिजीत भट्टाचार्य ने। ऐसे गीत सुनकर मेरे साथी खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं एक गीत तो होना चाहिए सरस्वती चंद्र का, तो थोड़ा इंतजार कीजिए।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

क्या बात है, इस प्यारे से गीत के साथ, फूलों की महक के साथ हम पहुंच गए हैं न्यूज़ के बिल्कुल करीब। न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आपके साथ रहूंगी और कुछ एक गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गाए हुए आप तक पहुंचाऊंगी। स्टे ट्यून्ड।

0: भी आप सबको भी मेरा प्यार प्यार कबूल हो और मैं हमेशा यही कहती हूँ वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, क्योंकि फिर अगर मैं सलाम कहूँ तो नमस्कार सत श्री अकाल यू नो केम छो मजा मचे दिस एंड दैट सब कुछ कहना पड़ता है. अब मुझे सारी लैंग्वेजेस नहीं आती है इसलिए मैं शॉर्ट स्वीट कह देती हूँ गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप? सो आप सभी को आज का दिन मुबारक हो. और दो गीत आपने बैक टू बैक सुने प्रोग्राम के इस आवर में. पहला गीत मैंने शोला और शबनम फिल्म से चुना था, 1992 में आई थी ये फिल्म. और इस गीत में आपने देवाशीष की आवाज़ सुनी और उनके साथ साथ शैलेंद्र सिंह एंड अलका याग्निक की आवाज़ें शामिल थी. और दूसरा गीत फिल्म युद्ध से था, 1985 में आई थी ये फिल्म. अलका याग्निक, अमित कुमार और शैलेंद्र सिंह ने ये गीत गाए थे. एंड आज अपना बर्थडे मना रहे, हमारी तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई. 74th बर्थडे पर प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह को हम सभी मिलकर हार्दिक बधाई देते हैं. वो आवाज़ जिसने 70 के दशक के युवाओं को, यूथ को पहला प्यार और शोकी सिखाई. मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी जब से देखा तुम्हें मुझको शायरी आ गई. मैं आशिक तो नहीं मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई. क्या बात है. बॉबी का गीत था और बॉबी के गीतों से ही राज कपूर साहब ने 1973 में इन्हें मौका दिया और ऋषि कपूर की आवाज़ बना दिया. 73 में राज कपूर की बॉबी सिनेमाघरों में जब आई थी तो सिर्फ एक फिल्म हिट नहीं हुई थी, भारतीय फिल्मी संगीत को कॉलेज के नौजवानों की एक ऐसी ताज़ा मासूम बेपरवाह आवाज़ मिली जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था. उस दौर में जब मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी एंड मन्ना डे जी जैसी आवाज़ों को, महेंद्र कपूर जैसी आवाज़ों को, ऐसे दिग्गजों का सिक्का चलता था हम कह सकते हैं, तब 21 ईयर्स ओल्ड एक नौजवान ने माइक संभालते हुए सीधे यूथ के, युवाओं के दिलों में दस्तक दी थी. उस सदाबहार आवाज़ का नाम है क्या? शैलेंद्र सिंह. आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. 4th अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ था पंजाबी फैमिली में. एंड शैलेंद्र सिंह ने 70s-80s के दशक की फिल्मी संगीत को वो मिठास और अल्लड़पन दिया जिसकी गूंज आज भी हर पीढ़ी के जहन में ताज़ा है. तो अब बहुत कुछ है कहने को लेकिन क्या करूं, फिर यही होगा कि वक्त ही नहीं बचता है गाने सुनाने का. तो मैंने बॉबी के दो गाने क्यों किए हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है. मैं शायर तो नहीं ये गीत सुनना चाहते हैं, या फिर मुझे कुछ कहना है, या फिर नहीं, आई थिंक एक कमरे में बंद नहीं, आ छोड़ देते हैं आज हम अकेले रहते हैं, पर मैं शायर तो नहीं और मुझे कुछ कहना है, इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है? ए, मैं शायर तो नहीं, या बी, मुझे कुछ कहना है? जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप इंडिया में कहीं भी पैसे भेजना चाहते हैं तो काम बहुत आसान है. You can go in the branch, you can go online, या फिर आपने अगर डाउनलोड किया हुआ है ऐप तो घर बैठे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. Terms and conditions are always there. One British sterling pound can get you today 126 rupees and 50 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. One performer.
2: Countless personalities.
1: whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Annapurna Chakki Atta, 10 kilos plus Foco Coconut Water, 1 litre, just $7.99. Master Chow Hakka Noodles, 140 grams, 5 for £1. Hira Mango Pulp, 850 grams, 2 for $2.79. Suhana Pickles, buy one, get one free. 1 kilo at $2.99 or 400 grams at $1.49. Dawat Extra Long Basmati Rice, 10 kilos, $15.99.
4: Or shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali!
2: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot Anniversary Sale, up to 70% off, is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.

0: शैलेंद्र सिंह, ये गीत कितना पॉपुलर हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: जी हाँ, कोका नूडल्स का ये गीत शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहूँगी। शैलेंद्र सिंह बचपन से ही गाते थे, लेकिन उनकी जो सपना था वो एक अभिनेता बनने का था। वो पुणे स्थित जो FTT है वहाँ पर, FTII वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया और एक्टिंग सीखने भी लगे। उसी दौरान शोमैन राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए फिल्म बॉबी 1973 में उसकी तैयारी में जुटे थे। एंड फिर उन्हें एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जो कि ऋषि कपूर को सूट कर जाए। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर से शैलेंद्र सिंह की मुलाकात करवाई, और जब शैलेंद्र सिंह ने अपनी सहज सी बहुत ही सीधी सी आवाज़ में गाकर सुनाया, तो राज कपूर तुरंत समझ गए कि ऋषि कपूर को यही आवाज़ सूट करेगी। एंड उन्होंने उसी टाइम उन्होंने साइन किया। बॉबी का क्या हुआ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बॉबी का तूफान जो था वो सबके सर पर चढ़कर हावी हुआ था, और फिल्म बॉबी के संगीत ने देश भर में धूम मचा दी थी। मैं शायर तो नहीं, आनंद बख्शी साहब के बोल, शैलेंद्र सिंह की मखमली आवाज़ और उनका अंदाज़, इस गाने को युवाओं ने एक एंथम बना दिया था। झूठ बोले कौवा काटे, मुझे कुछ कहना है, ना मांगू सोना चांदी, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के गाए हुए इन नगमों ने उन्हें रातों रात स्टार प्लेबैक सिंगर की कतार में खड़ा कर दिया था। इस पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला था। एंड ऋषि कपूर की ऑन स्क्रीन पहचान और मल्टी स्टारर कल जो थी वो शैलेंद्र की आवाज़ बन गई थी। और बहुत से इन्होंने गीत गाए, उन्हीं में से एक गीत और मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये गीत है फ्रॉम द फिल्म चलते चलते, और साथ ही

0: ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं और ये गीत मैंने फिल्म चलते चलते से चुना था 1976 में आई थी ये फिल्म एंड शैलेंद्र सिंह की आवाज़ का जादू 1970 से लेकर 80s तक तो बहुत चला था एंड अमर अकबर एंथनी 1977 में इस कर फिल्म में के सबसे बड़े क्लाइमेक्स टाइटल ट्रैक में भी शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर के हिस्से को आवाज़ दी थी अनहोनी को होनी कर दे यस याद आ गया वो गाना देन परवरिश 1977 में मनमोहन देसाई की इस हिट फिल्म में भी हम प्रेमी प्रेम करना जाने ये गीत भी किशोरदा के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ऋषि कपूर की आवाज़ में जो बिट था वो किसने गाया था वो गीत गाया था शैलेंद्र सिंह जी ने आज बर्थडे मना रहे हैं बहुत बहुत मुबारक और यहाँ मैं आपको चॉइस देने जा रही हूँ दो और गीतों की फिल्म सुहाग के दो गीतों में से भी मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ तेरी रब ने बना दी जोड़ी वो सुनना चाहेंगे या ए यार सुन यारी तेरी कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है ए और बी और जिन्होंने बॉबी के गीत के लिए वोट्स दिए थे उन सब ने अपनी अपनी पसंद सुन ली रानी इंसला धनसुख जी इन लूटन अर्जुन जी सोनी रावल जी हरप्रीत जी वैंकूवर में एंड विजय गुदरोई एंड हना आप सबने उसी गाने को सुनना चाहता और ये गीत प्यार में कभी कभी किसने आप तक पहुंचाया
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
0: और सरिता आपको अब बताने जा रही है कि लखविंदर वडाली आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली फ्राइडे 16 अक्टूबर को क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव एंड संडे 18 अक्टूबर को आईसीसी बर्मिंगम में परफॉर्म करने जा रहे हैं और कविता कृष्णमूर्ति इज लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल आप तक पहुँचा रहे हैं सनातन इवेंट्स वाले और अगर आपने दिवाली स्पेशल का प्रोग्राम भी देखने जाना है और उसके बाद दिवाली स्पेशल तो आप देख आए होंगे दिवाली स्टोरी जो थी पर ये दिवाली स्पेशल शो हो रहा है जिसमें कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म करने वाली है टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क
1: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो
0: जी हाँ कोशिश तो यही रहती है बिगेस्ट हिट्स आप तक पहुँचाऊँ वो गाने जो आपके दिल के करीब हैं सुहाग की तेरी रब ने बना दी जोड़ी सुनना चाहते हैं या फिर दूसरा वाला ऐ यार सुन जल्दी से अपने वोट्स दीजिएगा नसीब का गाना ऑल स्टार का गाना रंग जमा के उसमें भी शैलेंद्र की आवाज़ थी सागर के गीतों में भी उनकी आवाज़ थी

0: शैलेंद्र सिंह की ही आवाज़ सुन रहे हैं आप और ये गीत मैंने चुना जमाने को दिखाना है फिल्म से। और बता दूं कि कैमरे के आगे भी इन्होंने आजमाया अपना हाथ और अभिनय सीखने की जो उनका था कि उन्होंने एक्टिंग सीखी थी, तो बतौर हीरो में हीरो इन्होंने काम भी किया। सुलक्षणा पंडित के साथ एक फिल्म में आए थे मुख्य भूमिका में और वो फिल्म थी इकरार इन 1979। इसके अलावा वो कुछ अन्य फिल्मों में भी दिखे लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक मीठी आवाज़ वाले हीरो नहीं बल्कि सिंगर के रूप में ज़्यादा प्यार किया। और 70 के दशक के रोमांस को अपनी सहज आवाज़ से सजाने वाले गायक शैलेंद्र सिंह आज अपना 74th बर्थडे मना रहे, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। Right, we from fostering versus adoption and the approval process to financial support and the support available to carers. This episode gets into the question people often have but don't know who to ask. So, बहुत सी जानकारी लेने के लिए आपको ये एपिसोड देखना होगा जिसे होस्ट किया है रूबी रजा ने। एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.

0: मोहम्मद रफी साहब शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजें फ्रॉम द फिल्म सुहाग और ज्यादा मेरे साथियों ने इसी फिल्म को इसी गीत को वोट दिए थे थैंक यू एवर सो मच इसी तरह से अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहें एंड जैस्मिन आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया साथिया आप भी सुन रही हैं एंजॉय कर रही हैं किशोर जी आपका भी धन्यवाद ऐसे ही प्रोग्राम में साथ देते रहिए
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.24, Afghan Afghanis 85.82, Pakistani rupees 366.45, Bangladeshi taka 162.80, Sri Lankan rupees 437.42 and Kenyan shillings 171.62 US.

ये गीत हमें न्यूज़ के बिल्कुल करीब ले आया है. शैलेंद्र सिंह को एक बार फिर से हम बहुत बहुत बधाई देंगे. हैप्पी बर्थडे टू शैलेंद्र सिंह. ही 74 टुडे. न्यूज़ के उस पार आपसे मुलाकात.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत फिल्म फूल से मैंने चुना था और हमारी प्यारी सी इंतशा आप सुनना चाहती थी इस गीत को, तो मैंने इस आवर में शामिल कर दिया. एंड बहुत सारी फरमाइशें थी इस गीत के लिए भी. फिल्म आरजू का गीत आप सुनना चाहते थे, वो भी मैंने प्रोग्राम के लास्ट आवर में शामिल कर ही दिया. जिनकी भी ये फरमाइश थी उन सब ने जान लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. ज़हीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू. एंड अगर आप भी साइलेंटली प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं तो अपने होने का एहसास ला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कहाँ बैठे प्रोग्राम सुन रहे हैं. वैसे तो हम हर जगह सुनाई देते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आपने अगर हमारा ऐप टेलीफोन पर डाउनलोड किया हुआ है तो किसी भी कंट्री में बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन सकते हैं. लाइका रेडियो का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको चॉइस मिलेगी लाइका रेडियो, लाइका मैनचेस्टर, लाइका गोल्ड, देन हमारे लाइका रेडियो 90s के गाने सुन सकते हैं, पंजाबी रेडियो सुन सकते हैं, बहुत से. और अगर आप वैसे ही प्रोग्राम सुनते हैं 10:35 पर लाइका गोल्ड सुना जाता है, एंड मैनचेस्टर में सुनते हैं आप, DAB पर भी सुनते हैं, तो जिस भी जरिए को आपने चुना है उम्मीद करती हूँ कि सभी तक ये आवाज़ लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है. और मेरी आवाज़ की तारीफ करने वाले, थैंक यू सो मच. आवाज़ पे मेरा बस नहीं, ये ऊपर वाले की देन होती है. लेकिन हाँ, अखलाक जो होता है वो हमें अपनी संस्कृति, अपने पेरेंट्स से मिलता है, और किस हम जैसे माहौल में रहते हैं उसी तरह से हमारी बोलचाल भी बन जाती है. थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए. और अब अगला गीत मैंने चुन लिया है कैफी आसमी साहब का लिखा हुआ, फिल्म सत्यकाम से. आज मैं कोई चॉइस नहीं दे रही हूँ इस गीत में या इस गीत के किसी और गाने से के साथ, तो मैंने चुन लिया है दो दिन की ज़िंदगी. बहुत दिन हो गए मैंने ये गाना प्ले भी नहीं किया और बहुत दिन हो गए इस गाने को सुना भी नहीं है. एंड शर्मिला टैगोर इज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट, मुझे वन ऑफ माई फेवरेट अब मैं कहूँगी. मुझे नंदा भी बहुत अच्छी लगती थी, वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती थी, एंड ऑफ कोर्स शर्मिला टैगोर, मुमताज़ सभी अच्छे लगते हैं, राइट. एंड अब दो गानों की चॉइस दे रही है सरिता. आज मैं अब जैसे कि आपको अर्लियर भी बताया था कि संध्या शांताराम जी को हम याद करेंगे, तो उनकी फिल्म सहरा से मैंने दो गाने चुने हैं. पंख होते तो उड़ाती ये गाना सुनना पसंद करेंगे, या तुम तो प्यार हो सजना मुझे तुमसे प्यारा. और नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत है. तो कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, पंख होती तो उड़ाती या फिर तुम तो प्यार हो सजना? दोनों में से जो गाना आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दे. मीनवाइल आई विल डू दिस वर्क.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है. एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको 126 रुपीस एंड 50 पैसा मिल सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर. कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करते हैं इस पे डिपेंड करता है. और काम बहुत आसान है, कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच. इसके अलावा ऑनलाइन या फिर आपने अगर ऐप डाउनलोड किया है योनो SBI योनो ऐप, तो उसके जरिए घर बैठे भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं.
1: SBI offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
3: Elephant Medium Atta, 25 kilos, just $13.79. Laila Gold Basmati Rice, 10 kilos, only $12.99. Bikaji Namkeen, 200 grams, pick up 2 for just 1. And Tilda Pure Basmati Rice, 20 kilos, $32.99 with a free case of KTC Chickpea Tins.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
4: It's back, it's bigger and better.
5: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
4: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
5: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester, with shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
4: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
5: For store bookings, call 07803-240-580
4: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Passports, tickets, kids' tablets.
8: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
7: And checking in with grandma.
8: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
7: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
7: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Holiday sorted.
9: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: What a beautiful song. और बहुत से मेरे साथियों ने लिखा है, हमने पहली दफा इस गीत को सुना है. सत्यकाम था फिल्म का नाम. ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी और रजिंदर सिंह बेदी जी ने डायलॉग्स लिखे थे इस फिल्म के. बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर नहीं देखी जब मौका मिले ज़रूर देखिएगा. अशोक कुमार, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम किया था. फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. तो एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पजल कंफ्यूज हो गई थी कि ये कैफी साहब ने लिखा, क्योंकि आनंद बख्शी साहब ज़्यादातर गीत लिखते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए, पर ये गीत लिखा था किसने, कैफी आसमी साहब ने, जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक थे. और अब
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.
0: राइट भी इस गीत के साथ साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी हिंदी और मराठी सिनेमा के इतिहास में. ये तारीख हमेशा एक गहरी उदासी के साथ याद की जाती है. 4 अक्टूबर 2025 में हमें छोड़कर गई थी संध्या शांताराम. इसी दिन अपने जन्मदिन की कुछ ही दिनों बाद भारतीय सिनेमा की महान डांसर, दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम ने इस दुनिया को अलविदा कहा था. महान फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी, लेकिन अपनी कला और प्रतिभा के दम पर भारतीय सिनेमा के लिए एक अलग और अमिट पहचान बनाने वाली कलाकार. इन्होंने 3 बत्ती 4 रास्ता, झनक झनक पायल बाजे, 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, स्त्री, सेहरा, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, पिंजरा जैसी फिल्मों में काम किया.

0: 1971 में आई थी ये फिल्म जिसका नाम था जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली और इस फिल्म में संध्या ने नृत्य की ऐसी कल्पनाशील दुनिया रची थी जो उस दौर के लिए बहुत बहुत बहुत नई थी एंड कचरा लगा के में मोर और सांप के जोड़े के बीच संघर्ष और जो डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था ये बेहद कठिन नृत्य क्रम था बहुत मुश्किल था लेकिन संध्या ने पूरे समर्पण के साथ इसे निभाया था और उनके हाव भाव शरीर की गति और लय ने इस असाधारण दृश्य को यादगार बना दिया इसी फिल्म का शीर्षक जो नृत्य था जो जलबिन मछली नृत्य बिन बिजली वो भी बहुत अनूठा सा था और बहुत प्यारा गीत था और बहुत ही अच्छा इन्होंने डांस किया था संध्या ने इसमें मछली जैसे गति और लय को अपने डांस में उतारा था और उनके लहराते हाथ और हर तरह की इनकी जो एक्शन थे बहुत खूबसूरत थे तो संध्या जी को याद किया हमने इस गीत के जरिए अभी भी मेरे बहुत से साथी सुनना चाहते हैं पंख होते और कुछ ने लिखा है हमें चाहिए वो कौन सा वाला गीत दूसरा तुम तो प्यार हो तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ थोड़े से और मैसेजेस आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट्स मिले अभी बराबर वोट्स हैं और ये बता दूँ कि जलबिन मछली वाला गीत आप तक पहुँचाया
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
0: आइए भी आपको साउथ ऑल ट्रैवल वालों का ये मैसेज आप तक पहुंचा दें पर ये मैसेज है नहीं यहां पर तो क्या मैसेज है चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मैसेज ये है कि साउथ ऑल ट्रेवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर्स कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर्स होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर 3 nights ट्रेवल बाय 10th डिसम्बर कॉल साउथ ऑल ट्रेवल ऑन 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
4: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for $11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for $3.50. Falcon Broken Cashew Nuts 600 grams, just $2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea 1 kilo, $3.99.
3: Or shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages or Malabar. Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali.
5: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time. Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Janan, Janan. For 15 years, Jennan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jennan. For you, for us and for everyone. The Jennan and J. Anniversary Sale, up to 70% off, is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at jennan.com and junaidjamshed.co.uk.
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
2: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting. Danube 11. Danube
4: Properties. 11. Lister. Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, like our radio.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
2: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
11: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
2: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
11: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
2: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner,
1: Leica
2: Radio.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: Advertise on Leica Radio Midlands, covering Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire. Call us today on 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
13: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: In गीतों के जरिए हम संध्या शांताराम जी को याद कर रहे हैं. संध्या शांताराम के नृत्य की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो केवल नृत्य नहीं करती थी, डांस नहीं करती थी, वो डांस के माध्यम से कहानी कहती थी. उनकी आंखें डायलॉग्स करती थी और उनके हाथ भाव व्यक्त करते, जैसे यू नो सब फेस एक्सप्रेशंस, हैंड्स इन के मूवमेंट जो थी वो सब एक तरह से एक्टिंग करते थे. उनके कदम कहानी को आगे बढ़ाते थे और क्लासिकल नृत्य की परंपरा को सिनेमा की भाषा में ढालकर उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की थी कि जो अपने समय से कहीं आगे थी. 4 अक्टूबर 2025 में उनका देहांत हुआ. वो हमारे बीच नहीं रही हैं लेकिन अपनी कला के ज़रिए वो हमेशा हम में जीवित रहेंगे. ये थी एक ट्रिब्यूट छोटी सी संध्या शांताराम जी के.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you today. Kitne paise? LemFi wale de rahe hain. Indian rupees 127.46, Pakistani rupees 366.74, Bangladeshi taka 162.95, Sri Lankan rupee 437.82 and US dollars 1.32.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio.
2: LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: It's £100.60 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
4: Ye hai
2: Leica Radio.
1: ओ भाई, सरिता भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी. आज के दिन फिल्म रिलीज़ हुई थी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की. फिल्म का नाम था बाबू एंड इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, लेकिन मैं आज ये गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है. और एक सूचना और देनी थी कि गुफी पेंटल, आप सभी जानते होंगे महाभारत के यादगार शकुनी मामा, उनको भी हम सादर नमन करते हैं. अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर गुफी पेंटल जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. शकुनी का रोल तो उनका इतना खूबसूरत था कि कभी भुलाया नहीं जा सकता है. और इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1944 को लाहौर में एंड असली नाम था सरबजीत सिंह पेंटल. तो एक श्रद्धांजलि उनके नाम. अब मेरे जाने का वक्त है और कोई बात नहीं करने का वक्त है. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीकेंड. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, फिल्म नवरंग से चुना है. अब मेरे बाद सैंडी शाह आ रहे हैं आपके लिए विंटेज गोल्ड लेकर. उसके बाद आप हमारी गोल्ड नाइट्स का मज़ा लेंगे और फिर कल शुरू हो जाएगा वही सिलसिला. मंडे काजल आ जाएंगी ब्रेकफास्ट शो लेकर. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. जैजीज होंगे मैनचेस्टर में. बाय बाय, टेक केयर.
5: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Pen in the function, Leica.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.